0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन कर

0: पूरा पाकिस्तान है कभी भी कहीं भी जाने को तैयार, क्योंकि ये करते हैं AGS की मेंटेनेंस फ्री बैटरी पर एतबार। नो पानी नो परेशानी।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: Like us on facebook.com/FM247365.

0: बेबाक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: दिस प्रोग्राम इज

0: एंड
1: पेपक, आज ही अपने बैंक से बनवाए।
2: FM 100 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: दिस प्रोग्राम

0: एंड बेबाक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। दिस प्रोग्राम इज

0: एंड पेपक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247365

0: एंड बेपाक। आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
4: FM247365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगे।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉक नहीं करता।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
5: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
5: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100 traffic update.
1: Traffic update के साथ मैं हूँ फरोख इजाज़। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल को जिस तरह है, FM 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक इस वक्त कुछ जगहों पर ऑफिस टाइमिंग की वजह से ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है, जिसमें शाहराह फैसल से वो ट्रैफिक जो मंजिल पर मुफ्त कैदाबाद और वहां से मरीज सिटी की जानी आ रहा है कुछ दबाव का शिकार है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से वो ट्रैफिक जो सिंगर चौरंगी से इस वक्त जा रहा है ब्रूक चौरंगी की जानब, उसके दरमियानी रास्ते पर भी ट्रैफिक स्लो मूव कर रहा है। इसके साथ साथ FM 100 को मिलने वाली एक और इत्तला के मुताबिक जौहर मोड़ से वो ट्रैफिक जो इस वक्त डिग रोड शाहराह फैसल की जानब जा रहा है उस पर भी कुछ ट्रैफिक का दबाव है, लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करने का इरादा रखते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह रहें ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: पेपा कार्ड है
3: तो फायदा है।

0: बेबाक आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। दिस प्रोग्राम

0: एंड पेपक, आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: 9:30 AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL.

0: and Big Buck. आज ही अपने बैंक से बनवाएं.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: एंड पेपक, आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: खवातीनो हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में जायद कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपनी शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पर नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
3: पेपा कार्ड है?
4: है तो फायदा है,
5: पेपा है
3: तो ऐड टू कार्ड है,
5: पेपा है
3: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
6: FM247365 back to back, back to back, only music, no RJ talk,
7: only music, no RJ talk,
6: this is FM

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे. इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें. अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना सीएनआईसी और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं. याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा. लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें. इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें. अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है. अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें. जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है. इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें. शिकायत सबमिट होने के बाद आपको ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-555-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
6: FM 24/7/365

0: your location for maximum music.
1: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
3: Naya Pond's Body Lotion jisme hai 100 tola gold. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji hungi aapse khoob sari baatein. Janenge aapke haal ahwal ki kaisi chal rahi hai aapki zindagani. Tabiyat theek hai aapki ya phir hai tabiyat thodi nasaaz? Garmi bahut lag rahi hai, acha waqt guzar raha hai ya chutti ka din itna acha guzra ke ji ha sare gham jo hain wo aap bhul chuke hain? To kya haal ahwal hai aapke, is par bhi hogi baat. Janenge kaisa guzra aapka chutti ka din, aur isi ke saath saath hungi aapse khoob sari baatein. तो चलें जी, कर लेते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज. अब लोग सोच रहे होंगे कि जी मजीद बाकायदगी से आगाज क्या बाकी है. तो जी हाँ, प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से होता नहीं, बल्कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. तो लेट्स बिगिन.

तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। तो अब आपको बताते हैं तरीका कार कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो जी इसके लिए करना आपने कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ जो है वो आप RJ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कॉमेंट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी स्टेटस हो चुका है अपडेट। सो आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, या फिर आप 3636 पर मैसेज करें या फिर RJ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैसेज करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। सो इट्स योर चॉइस, इट डिपेंड्स ऑन यू। और इसी के साथ साथ क्योंकि प्रोग्राम का बकायदगी से आगाज हो चुका है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाई कैसा गुजरा आप सबका छुट्टी का दिन, क्या किया, कहीं आए गए आराम किया, बहुत सारे कामों की नजर हो गई छुट्टी, या फिर नहीं भाई बड़ी एक्साइटिंग रही आपकी छुट्टी, या किसी की तबियत खराब रही। अच्छा वैसे इस वक्त जो है वो कराटी इन्फ्लुएंजा भी बहुत फैला हुआ है, नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, और ये अभी तो अक्टूबर का है, फिर नवंबर और दिसंबर में जब सर्दियां आएंगी थोड़ा मौसम तब्दील होगा। तो ये अभी ये है कि अभी 2-3 महीने ना हमें इसलिए खबरें सुनने को मिलेंगी, हर कोई मुतासर होगा। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो हैविंग दिस नजला राइट नाउ, बट मेरा नजला जो है वो है लेकिन वो ऑफिशियली तौर पर ना जाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे भी नजला हो रहा है। तो इस वक्त की सिचुएशन ऐसी है कि हर कोई जो है वो इस वक्त नजले, खांसी, जुकाम में मुब्तला है। तो हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुमा आमीन। तो भाई कैसा गुजरा आपका छुट्टी का दिन, क्या किया, आज का दिन कैसा गुजर रहा है? टुडे इज मंडे, मंडे मींस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क। तो अपना काम में मसरूफ है, या फिर नींद आ रही है, थोड़ा सुस्ती से काम चल रहा है, या फिर भाई लंच टाइम से पहले पहले सारा काम निपटा दिया है, तो क्या सिचुएशन है हमें जरूर बताएं। हम करें आपके मैसेज का इंतजार, लेकिन खाली खाली नहीं, एक अदर ट्रैक के साथ। सो एंजॉय।

0: us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: Yes, my friends, तो आ चुके हैं हम वापस. और भाई बात ये हो रही थी कि कुछ देर पहले मैं मशवरा दे रही थी और आप लोगों को, और मैंने कहा कि भाई यहाँ पर आपको ऐसे मशवरे सुनने को मिलते रहेंगे, तो आप सुनते रहें लंच टाइम स्पेशल विद ऑब्वियसली मी फातिमा खान. तो भाई बातों का सिलसिला तो आप लोगों के साथ जारी है, तो वहीं मुझे और भी कुछ मशवरे याद आए, तो मैंने कहा चलो जी अपने लिसनर्स को देते चलते हैं, क्योंकि बातें तो चल रही हैं लेकिन साथ ही साथ मशवरे भी चले हैं तो अच्छा रहेगा. तो भाई एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज, हर वक्त अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है. हर किसी के मैसेज का फौरन रिप्लाई देना और हर किसी के लिए वक्त निकालना जरूरी नहीं है. अपनी मेंटल पीस और अपने लिए वक्त निकालना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. तो ये बात एक हकीकत है, हम अक्सर औकात ना इतने परेशान रहते हैं कि जी हमें हर वक्त अवेलेबल रहना होता है, किसी ने मैसेज किया है, किसी ने रिप्लाई किया है, सो हम बहुत डेस्परेटली एक्साइटेड होकर जल्दी जल्दी मैसेज कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहे होते हैं कि यार ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मतलब एक टेंशन में हम लोग रह रहे होते हैं. लेकिन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर वक्त हर पल जो है वो अवेलेबल रहें. जरूरी ये है कि आप अपने लिए वक्त निकालें और थोड़ा सा मेंटल पीस को एक्सपीरियंस करें, यानी कि सुकून से रहें, अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंगली जिए, ना कि लोगों के अकॉर्डिंगली, और ना ही उनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहें. और उससे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, और आजकल इस सोशल मीडिया के दौर पर ना हम लोग अपने आप को बड़ा मुतासर कर रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन चीज है ना, वो ये है कि अपनी जिंदगी का मुकाबला दूसरों से ना करें. हर इंसान का वक्त और सफर अलग होता है. किसी की कामयाबी देखकर अपनी मेहनत को छोटा ना समझें, अपने मुकाबला कल वाले से खुद से करें. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. सॉरी नजला, बात यह है कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी का मुकाबला ना दूसरों से ना करें, अपनी मेहनत और अपनी एफर्ट्स को जरूर सराहें, क्योंकि अल्लाह पाक सबकी मेहनत देख रहा होता है. ऐसा नहीं है हमें लग रहा होता है कि यार इसकी जिंदगी हमसे कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है, इसके कितने मजे है ना, ये चीज हम हर वक्त हर पल सोच रहे होते हैं कि यार वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी. तो आपको अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपकी जिंदगी कईयों से बेहतर है. जब आप तकलीफ में हो और ये सोचें कि जी हमारी जिंदगी ना अच्छी नहीं है, उसकी है, तो कभी अपने से नीचे शख्स को भी देखें और रियलाइज करें कि अल्लाह पाक का दिया हुआ कितना कुछ है आपके पास. तो कंपैरिजन एक बहुत गलत चीज है, इससे आपने करना है बहुत ज्यादा गुरेज. और बेसिकली ना सोशल मीडिया ने आजकल हमें इस तरफ ले आया है, क्योंकि हम लोगों के लाइफस्टाइल देख रहे होते हैं, लोगों की वीडियोज, लोगों के रील्स देखकर हम लोग बड़े अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है वाओ यार दे हैव अ कंप्लीट लाइफ, दे हैविंग अ सच अ ग्रेट लाइफ. तो इस चीज को अपनी जिंदगी से आपने निकाल देना है, मतलब इतना स्ट्रेस और टेंशन ना लें, दूसरों की लाइफ का कंपैरिजन ना करें, अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंगली जिएं और यही सोचें कि ये बड़ी खूबसूरत जिंदगी है. तो ऐसे मशवरे आपको मिलते रहेंगे, और इसी के साथ साथ एक और ट्रैक एंड देन वी विल बी राइट बैक.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: FM 100 like us on Facebook.com/

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Ji haan, main aa chuki hoon wapas kyunki hum gaye the ab break ki jaane aur ab break se wapas aa chuke hain aur aap logon ke saath jo hai wo guftugu ka silsila jari hai. Program ke second half mein hum dakhil ho chuke hain. Ek ghanta aapke saath guzar liya hai, lekin mazid ek ghanta maujood hai. Like approximately hamare paas 43 to 42 minutes aapke saath guzarne ke liye maujood hain. To jaldi se aap hamare program ka hissa bane, hame 3636 से मैसेज करें, यानी कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, की एचआई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. साथ ही साथ जो है वो आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. तो आज कुछ मजे मजे के मशवरे हम आपको दे रहे हैं, वो चीजें जो जरूरी हैं जिसे हम अक्सर औकात इग्नोर कर देते हैं, अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते, उसी पर हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. तो बातें तो भाई बहुत सारी हैं, लेकिन काफी बातें हमने कर ली हैं, तक इतनी बातें हम करते नहीं है क्योंकि प्रोग्राम के सेकेंड हाफ की भी एक अदद रिवायत है कि पहले एक अदद ट्रैक हम करते हैं लोगों को डेडिकेट और उसके बाद अपने गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे. और आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम असरार की आवाज शामिल करते हैं और ये ट्रैक जो कि सबका बहुत ही ज्यादा फेवरेट रह चुका है नहीं बल्कि स्टिल पीपल इज रियली लाइकिंग दिस ट्रैक. तो मैंने कहा चलो जी इसे भी हमने शामिल नहीं किया तो शामिल भी करते हैं और आप सबको करते हैं डेडिकेट. सो एंजॉय.

0: अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अच्छा वैसे एक मजे की बात यह कि कुछ चीजों की आपको इतनी आदत हो जाती है ना कि आप वैसे रहने के आदि हो जाते हैं, तब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। खैर जी मैसेजेस आ गए, शामिल करते हैं। साबर भट्टी कहते हैं, हाउ आर यू, 2 महीने बाद आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, पंजाब गया था। ओके जी कहते हैं, प्रोग्राम वेरी गुड है, बहुत शुक्रिया। इन्होंने ट्रैक की रिक्वेस्ट की है लेकिन इस ट्रैक को हम शामिल नहीं कर सकते, सो आप कोई पाकिस्तानी ट्रैक बताएं, हम उसे शामिल करेंगे। और जरीनूर कहती हैं कि इनके लंच में है पालक गोश्त और बॉयल चावल। अरे वाह, पालक गोश्त ना मेरा मोस्ट फेवरेट तरीन मील है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पालक गोश्त, लेकिन पता है आज तक मैंने इसे बॉयल चावलों के साथ नहीं खाया है और मुझे इसे खाना है, मैं खाना चाहती हूँ, लेकिन इत्तेफाक है कि ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस बने ही नहीं अभी तक कि मैं इसे चावलों के साथ खाऊं, लेकिन पालक गोश्त मेरा बड़ा फेवरेट है और मेरा काफी दिनों से मजीद दिल भी चाह रहा है कि मैं इसे खाऊं और एंजॉय करूं, लेकिन इस दफा मैं चावलों के साथ इसलिए खाऊंगी क्योंकि मेरे लिसनर्स भी बता रहे हैं कि वो लोग इस तरह खाते हैं। रदा भी कह रही थी कि पंजाब में जो है ये एक प्रॉपर मील होता है, यानी कि पालक गोश्त के साथ बॉयल चावल। तो मेरा इरादा है कि मैं भी जल्द ही ना इस वाले जो एक कॉम्बिनेशन है इसे ट्राई करूं और इसे रिव्यू करूं कि कैसा लगता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस एंड वेरी नाइस लंच। बाकी लोगों से भी उनका लंच हम जान रहे हैं, 3636 से मैसेज करें या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। ब्रेक और ट्रैक के साथ आते हैं वापस।
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है,
3: पेपा है
1: तो ऐड टू कार्ड है,
3: पेपा है
1: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247 365
5: FM 247 365। توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: ओके जी, सो आप लोग एंजॉय कर रहे थे इस ट्रैक को. एंड यस, रिनूर का एक और मैसेज आया है, कहती है ठीक है कल यही सवाल रखिएगा, जवाब भी अच्छे आएंगे. बिल्कुल जी, डील डन होती है, क्योंकि मुझे क्योंकि मैं आदत पे बात भी कर रही थी, तो जरीनूर ने अच्छा जवाब दिया, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, जरीनूर की बात को अब हम एक आदत सवाल में तब्दील कर लेते हैं. तो आप याद कर लीजिएगा ऐसी क्या क्या चीजें, क्योंकि कल का हमारा मौजूद गुफ्तगु यही होगा. और जरीनूर की अगर आपके यहाँ लाइट ना जाए तो आप भी जल्दी हमें ज्वाइन कर लीजिएगा. अभी इस सवाल को सोचते हुए मेरे जहन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इस पर बात कल ही होगी. आज की बात अलग है, कल की बात अलग है. तो कल इंशाल्लाह जब आएंगे तो फिर इस मौजू पर बात करेंगे. लेकिन आज है 11th of September. ओ आई मीन सॉरी, सितंबर भी कर दिया, 11th भी कर दिया, सॉरी. बहुत पीछे चली गई मैं, एक महीना पीछे चली गई. सो आज 12th of October है. सो हैप्पी बर्थडे अगर आज किसी की बर्थडे है. सॉरी, मैं एक महीना पीछे चली गई थी, लेकिन मैं एक महीना एक दिन पीछे चली गई थी, लेकिन मैं फौरन से वापस आ गई हूँ कि जी हाँ, सख्त अक्टूबर है. And it's 12th of October. So happy birthday to you. लेकिन आज कोई खास दिन मनाया बजाहिर जान ही रहे हैं, जिस पर जिक्र किया जाए. हाँ, नेशनल सेविंग डे है, एंड सेविंग तो भाई बड़ी जरूरी है, लेकिन इस महंगाई में सेविंग हो नहीं रही है. बस पैसे खर्च हुए जा रहे हैं. बस अल्लाह पाक रहम करे हम सब पर, और अच्छी खबरें हमें सुनने को मिले जल्द. चलते हैं फिलहाल ब्रेक की जाने, और आते हैं वापस ब्रेक के बाद.
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
3: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाएं,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है,
3: पेपाक है
1: तो ऐड टू कार्ड है,
3: पेपाक है
4: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है.
6: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है.
7: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
8: हमारी जिम्मेदारी है.
9: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
10: FM 100
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
10: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
3: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाए. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.

0: बेबाक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: This program is brought to you by Paybuck. आज ही अपने बैंक से बनवाएं. And
1: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया. 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: This program is brought to you by
3: Paypak. Aaj hi apne bank se banwaye.
0: And
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365.

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL
3: 100 FM.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account.
0: This program is brought to you by
4: PayPak. आज ही अपने बैंक से बनवाएं.

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने आप ना कुछ 3 बार मौत देखा।
2: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैस कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
7: FM 24/7/365

0: बेबाक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय पेपक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. FM100. 31 साल FM100. आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

मुझको पास आते बैठ के चेक कर लो पूरी है तो रेस एटीट्यूड अंग्रेज पर रेस वो ही जीते जो है स्टेडी एंड स्लो बैम बैम दिल धड़के डर डर के कितने की करता है हाँ सुन के तेरी सारी कहानी हर शैतानी करता है हाँ

0: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: बैटरी पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: पेपर कार्ड है
3: तो फायदा है।

0: फायदा दे।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: किसने कहा था पैसे बचा?

0: across the nation, there is only 100 FM.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimun Khan. Across the nation, this is FM 100.
2: FM 100.
3: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
4: HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
3: This program was brought to you by
5: Paybuck. Aaj hi apne bank se banwaye.
3: And
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
8: पेपा कार्ड है
9: तो फायदा है.

0: Paybuck. आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram. This program was brought to you by AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. जहाँ ख्वाब वहाँ HBL.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365.
1: You're listening to the greatest radio station.

हेलो माइक चेक 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे। सुन रहे हैं FM 100, मेरा और आपका साथ रहता है रात 9 बजे से लेकर और 11 बजे तक। कोशिश करते रहते हैं ये 2 घंटे जो है बड़े मजे के गुजरे, बगैर लड़ाई झगड़े के, तारीफें हों, बुराइयां कम हों। लेकिन ऐसा होता नहीं, बुराइयां भी टिका के हो रही होती हैं और तारीफें तो होती ही होती हैं। मौसम तब्दीली का मैं जिक्र करता रहता हूँ, ख्याल रखा करें अपना, गाड़ी में है इत्मीनान के साथ, हेड लाइट जरा ऑफ कर लें, आगे वाले को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, सीट बेल्ट भी बांध लें। इस पे हम लोग काफी जरा कौन बांधे भाई सीट बेल्ट, पैंट की बेल्ट बनी हुई है, बस यही बात है। ऐसा नहीं करो यार, ऐसा नहीं करो यार, अपना भी ख्याल रखो और इर्द गिर्द के लोगों का भी। घर में है तो भी मैं कहूंगा, आजकल के हालात ही ऐसे हैं, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, खर्चा बहुत हो जाता है। अच्छा जनाब, मंडे और मंडे वाले दिन, ओल्ड इज गोल्ड, पुराने गाने मैं आपको सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ हिट गाने हों। आज भी क्यू शीट बहुत दिल के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ बनाई हुई है। पहला गाना ही, जितने अम्मी अब्बू सुन रहे हैं उन तमाम बुजुर्गों को मैं डेडिकेट कर देता हूँ, और वो है कैसे,

सुनवाइज वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं 36361। सलाम, कैसे हैं सबको? सलाम जरीनूर जी, वालेकुम सलाम भाई। आज नए लोग भी मुझे मैसेज करें ताकि पता चले कोई नए नए लोग कौन थे। इसके अलावा जो मेरे सुनने वाले हैं उनसे तो हमें है ही मोहब्बत, और उनका साथ रहता है तो शो जरा एनर्जी के साथ हो जाता है। संजू जी हमेशा, यानी कि संजीदा, वालेकुम अस्सलाम संजीदा, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? और वेलकम किया है आपने, बैकग्राउंड सुन के कह रही भाई एनर्जी आ जाती है। अच्छा

ना, नहीं हो सकती, मतलब चाहते तो कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ना, वो चाह रहे सब कुछ हमारे पास हो, बाकी लोग जो है चाय पी रहे हो और तालियां बजा रहे हो, तो इस पे भी बातचीत होगी। और अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो एहतियात जरूर रखें। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जानिब और शामिल करते हैं मैडम जी का एक और बहुत खूबसूरत ट्रैक। आज मैडम जी के काफी सारे गाने मैं आपको बता दूंगी।

All right, जी, welcome back to the FM 100 आयाज अहमद के साथ साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। सलाम सर, खलील बलोच गडाफ से, हो सके तो नाजिया हसन का सॉन्ग सुना दे। सरकार, नाजिया हसन तो मेरी भी बहुत फेवरेट है, लेकिन आज की शीट में नाजिया हसन का गाना, अच्छा किसी को बताओ नहीं, चुपके से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। खलील भाई क्या याद करूँ, रिक्वेस्ट मैं वैसे वो पूरी करता नहीं हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन नाजिया जी के हम सभी फैन। चलो देखता हूँ। शब्बीर हुसैन आ गए फ्रॉम कराची कोरंगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कोई हदीका क्या नहीं कर सॉन्ग चौधरी साहब, आज हदीका नहीं ना, आज सारे मैडम नूर जहाँ ये वो नहीं, मेरी फरमाइश पूरी नहीं होनी है। देखो तुम्हारी फरमाइश पूरी करेंगे तो सब आ जाएंगे। अच्छा जनाब, महाजबीन आ गई है। अस्सलाम वालेकुम अयाज। वालेकुम सलाम महाजबीन, क्या हाल है आपके? नाइस सॉन्ग, जलते हैं अरमान। बस यार आजकल तो हर चीज ही जल रही है, लोग आपस में जल रहे हैं और कुछ नहीं तो कुछ लोग इलाके जला रहे हैं, जलाओ घिराव शुरू हो गया। बस अल्लाह पाक करम रखे। बहुत दूर से एक खातून तशरीफ ला चुकी हैं, बहुत दिनों के बाद सबको सलाम कह दिया। नाजिया नहीं, नादिया मलिक। नादिया क्या हाल है तेरा? देखो इतने दिनों बाद आओगी तो नाजिया मुंह से निकले। और नाजिया को वैसे भी बहुत, नाजिया हसन का जिक्र कर रहे थे तो नाजिया मलिक आ गई है, तो इनको बहुत याद करते हैं। और कहने में याद करने का बहुत शुक्रिया। खैर कोई बात। अच्छा जी, मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं जरा, कराची में तो अभी जरा नहीं स्टार्ट हुई इतनी, लेकिन पंजाब में जो है जरा ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवाएं तब्दील भी हो रही हैं। तो इसी हिसाब से खूबसूरत सा ये ट्रैक जो है वो मैं आप सबको डेडिकेट कर देता हूँ। फुप्पा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? अहमद रुश्दी भी है इसमें।

भाई जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और जिंदाबाद जमीन। रिक्वेस्ट करिए ना, अच्छी बात नहीं ना, एक बार मुस्कुरा दो। जैसे आजकल मुस्कुराना भी एक काम हो गया बड़ा, जो हालात और महंगाई जो चलती दोनों चीजें साथ, मुस्कुराना बहुत मुश्किल हो। रोने का कहते तो हो सकता है 3-4 दफा बंदा रो ले। अच्छा जी, संजू जो है वो वेलकम कर रही हैं, और क्या भाई जुमले बड़े अच्छे इस्तेमाल किए, नादिया के लिए बहुत सारा प्यार कहते हैं, इतने दिनों बाद क्यों आती है, मसरूफ रहती है अपने कामों में, जब भी फ्री होती है सुन लेती है, ये भी बड़ी बात है। अच्छा जी, और कह रही है आज आपने टीम का जिक्र नहीं, हमारी तो टीम वैसे पता ही है, लेकिन फिर भी अच्छा किया आपने याद दिला दिया। प्यारे से हमारे नदीम अंसारी भाई, दी ग्रेट, इसके अलावा सत्तार और उस्मान भाई बहुत प्यारे। अच्छा जी, सर फारूक कह रही है लवली सॉन्ग प्ले हो रहे हैं, बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी।

0: कैरी भाई ये प्लीज एक बार मुस्करा दो, मत करो यार, रिक्वेस्ट नहीं करो, बाकी लोगों ने की है, सबकी रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ेगी ना। और बहुत दिनों के बाद मुश्ताक मैंगल आ गए हैं, बहुत खूब आयाज लाला, इस बार मेरा पहला मैसेज गोल करके, अरे कहाँ आया पहला मैसेज सरकार, आप जब आते हैं शिकायत के साथ आते हैं, मुंह भी शिकायत वाला हो गया आपका, मैं बता रहा हूँ, खुश खुश आया करो, अच्छी पॉजिटिव बात, देखो आया मैसेज मैंने फॉरन पढ़ दिया, कहीं और कर दिया होगा मैसेज, याद करो। अच्छा जनाब सर ये चेक करें, कुछ सेकंड की चीज है।
1: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
2: Active, yummy, adorable, zabardast. Ye pyaas to suno yaar,
0: जनाब शामिल करेंगे मेरे बहुत फेवरेट, बल्कि सबके फेवरेट कौन भला, मेहदी हसन साहब, और खास तौर पे इनकी ये लाइव परफॉर्मेंस कमाल, सुने और चेक करें जरा।

बात है जनाब, क्या बात है मेहंदी हसन साहब। लाइव परफॉर्मेंस थोड़ी सी तरह रिकॉर्डिंग उतनी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी इस रिकॉर्डिंग में भी कमाल इनकी गायकी लग रही थी। और मेहंदी हसन साहब को ऐसे तो फिर शहनशाह गजल नहीं कहते थे, क्या कहने, खूबसूरत आवाज यार। ये आर्टिस्ट थे यार, सीरियसली। अब ऐसे सोचें कोई इस तरह का आर्टिस्ट मिल जाए, मुश्किल है बहुत। अच्छा जी, आज मैं भी बहुत उदास हूँ, आपका शो सुनकर खुश हो गई। जरी क्यों उदास हो, क्या है चक्कर, किस वजह से उदास रहती हो तुम? पानी घर में नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, क्या है चक्कर यार? हम लोग तो इसी में फंसे हुए हैं। इतने बजे गैस, इतने बजे बिजली, इतने बजे पानी, ये हो गई हमारी जिंदगी, बर्बाद हो गई। लेकिन कोई नहीं यार, उदास नहीं हुआ करो, बस खुश रहने की पूरी कोशिश करो। ओए होए होए, संजू जी लगता है बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट गाना है इनका, कह रहे हैं अब बनाना शो। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और शेर जो पसंद आ जाते हैं वो भी लिख देती है भाई, ये क्या बात है जनाब, क्या बात है। और मिस्टर स्वारू क्या कहने, बहुत शुक्रिया। और वो कहनी है कि भाई अल्लाह सब खैर करेगा, टेंशन। हाँ मैं भी यही कहता हूँ यार, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब सही होगा। अच्छा जी, जरी को बोले कि समोसे खाए, समोसे खाने से हो सकता है कुछ खराब अगर खा लिए तो पेट में गड़बड़ हो जाएगी, जब पेट में गड़बड़ होगी टेंशन और बढ़ जाएगी, और जब टेंशन और बढ़ेगी तो डिप्रेशन और बढ़ेगा। मेरे ख्याल से समोसे ना खाएं तो अच्छा है। और खास तौर पर मैं दोस्तों एक बात बताऊं, ये कीमे वीमे वाली चीजों से आजकल परहेज करें, वेजिटेबल के फिर भी चल जाएंगे, वैसे तो हालात भी वेजिटेबल के ही हैं, लेकिन ये जो लोग खा रहे होते ना कि कीमे शीमे ये वो, उफो बिल्कुल ना खाएं यार, पता नहीं किस किस जानवरों का मिला मिलू के दे देते, फिर उससे पेट में गैस बनती है और फिर वो गैस दिमाग में और फिर वो टेंशन। मैं आपको बता रहा हूं, ना जी भी कह रही आलू के खाएं, आलू के, आलू खा के आलू ना बन जाए जरीन, और ये भी तो है ना मसला, खाना और सोना है, फिर ये भी नहीं कि वॉक पे चले जाएं, वॉक पे जाएंगे तो मोबाइल छिन जाएगा। क्या बताएं, यूके में बैठी हो तुम नादिया, नादिया मलिक यूके में बैठी हो, यहाँ का सोचो, बाहर नहीं निकल पा रहे लोग, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं बस, यार गोली नहीं चलाया करो यार। ये जो डाकू अगर मेरे सुन रहे, जो मोबाइल छीनने वाले दोस्त सुन रहे हैं, क्या कहूँ यार, गोली नहीं चलाया करो यार, ले लो मोबाइल ले लिया करो यार। देखो मैंने उस दिन मैं देख रहा था फेसबुक पे, तो उस पे भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार कि भाई गोली नहीं चलाओ यार, तो ये हालात आ गए, पुलिस पुलिस तो पकड़ नहीं रही, तो हम ही डाकुओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार नहीं करो यार, ऐसे नहीं करो। अच्छा जी, पप्पा मेरे आ गए थे और बड़े प्यार से, इतनी मोहब्बत से जो है ना मुझे कॉल कर देते हैं, पप्पा खुश रहे आप। और अहमद रुश्दी के गाने की पूरी डिटेल बताई उन्होंने, एक एक चीज बताई उन्होंने। अच्छा जी, नादी अभी तक समोसा में फंसी है, कह रही है अच्छे भी आलू के होते हैं, वाह वाह वाह। अच्छा जी, कह रही है कि हर वक्त फिक्र एंड दुआ होती है माय होमलैंड, बस दुआ करो, दुआ करो अच्छे लोग आए इस मुल्क के ऊपर, अच्छे लोग आए। हाय हाय, क्या बात, एक और खूबसूरत ट्रैक।

फरमाए जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंचना शुरू हो गए हैं। अच्छा जनाब, मैं बाकी लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करूंगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने भाई खलील बलोच का जो रिक्वेस्ट है नाजी हसन वाली, वो कैसे मैं भूल जाऊं। खलील भाई बस सुन रहे हैं ना भाई, एक दो मैसेज पढ़ के नाजी हसन का सॉन्ग एक खूबसूरत सा मैं आपको डेडिकेट भी करता हूं और सुनाता भी हूं। सुंबुल आ गई है। सुंबुल जी क्या हाल है आपके? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? फैमिली को दिल से सलाम, पूरी फैमिली को वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अयाज भाई, हमारी आवाज उठाने पर और हमारे लिए बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज और आपका लाजवाब शो बहुत पसंद है, थैंक यू वेरी मच। और सच बताऊं तो मैं आप ही को रिप्रेजेंट करता हूं, जब मैं यहां सीट पे बैठता हूं तो आप ही लोग होते हैं। आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, अल्लाह हम सबको से हक में बेहतर करे, आमीन सुम्मा आमीन। चाची मिस्टर फारूक, रानी से रानी जी क्या हाल है, कहाँ हैं आप? और बिलावल भाई को भी मेरा दिल से सलाम, वालेकुम सलाम उनकी जानिब से। और महाजबीन आपका भी जो गजल है वो मैंने रख ली है, एक बार मुस्कुरा दी क्या याद करेंगे। वालेकुम सलाम भी आ गया मिसेस फारूक की तरफ से। वादे पूरे कब होते हैं जो एतबार हो? ओए होए, बहुत बुरे एक्सपीरियंस लग रहे हैं मुझे संजू, तुम्हारे बहुत बुरे एक्सपीरियंस लग रहे हैं। शहजादे ये गाने में बद्दुआ क्यों देते हैं, झूठ बोले तो मर जाए, बस बद्दुआएं सब चल रहा होता है, हालात के ऊपर होता है ना शायर के। पेमेंट वक्त पे मिल गई तो दुआएं, वक्त पे नहीं मिली तो बद्दुआएं, बस ये हालात पे चल रहा है। ज्यादा सीरियस मत हो लीजिए जनाब नाजी हसन का ये खूबसूरत सा ट्रैक।

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखाधड़ी, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: यह पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट के एलजी को रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए जय सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
4: ये मुफाद आमा का पैगाम आप सब पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखिए, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है, तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है, तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मिजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बर वक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।

राइट जनाब, वेलकम बैक सुन रहे FM 100 आयाज अहमद के साथ, और साथ ही साथ मैसेजेस के HR स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर। इमरान साहब ने सिर्फ अपना नाम लिखा और कुछ नहीं लिखा। इमरान भाई की हाल है तुम्हारा, तुम ठीक हो ना? अच्छा जनाब अजहर साहब बहुत शुक्रिया, ये भी मुल्क के लिए काफी परेशान है। अच्छा कुछ कुछ खबरें सुन के ना आदमी अजीब सा हो जाता है यार, क्या है हो रहा है? मेन जो खबरें वो गायब होंगी। इकरार भाई नजर आ रहे हैं, इकरार भाई को चुक लिया, वो हर चैनल पे वही नजर आ रहा है। तो भाई असल खबरें सुनाओ यार, क्या हो रहा है पिशावर में, क्या चीज है उसके बारे में बताओ। कहानी सही लग रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, हर आदमी जो है ना तजिया निगार हो गया और हर आदमी को समझ आने लग गई है कि कहानी क्या है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। टेक्निक थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में थोड़ी जरा कहानी चेंज करनी पड़ेगी। पुराना स्क्रिप्ट ना बहुत बोरिंग हो गया, सबको पहले से हर चीज का पता चल जाता है ये होने वाला है। स्क्रिप्ट राइटर अच्छे होने चाहिए ताकि जरा मजा आए, अनएक्सपेक्टेड चीज होगी ना तो फिर जरा मजा आता। दाल का लिए बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल किचन वाली मिसाल दी तुमने, संजू हर वक्त किचन में घुसी रहती हो। अच्छा जनाब, और इरफान साहब कहते हैं कि छुट्टियां कम किया करें, आप नहीं आते तो मैं उदास हो जाता हूँ। भाई कितनी मोहब्बत है यार तुम्हारे मैसेज में, सीरियस लव यू मेरे भैया, बहुत शुक्रिया। यार बस कामों का सिलसिला दोस्तों, कामों का सिलसिला मुझे याद आया, तो एक नया चैनल है न्यूज का आ गया है, यूट्यूब पे है, आप जाके देख सकते हैं NTN न्यूज। यहाँ जो है ना ये आपने यूट्यूब पे जाके लिखना है NTN न्यूज चैनल तो वो आ जाएगा वहां पे। अब आपके भाई का शो जो है वो मॉर्निंग शो जो है वो आगाज होने वाला है, तो उसकी रिकॉर्डिंग से तो शायद कुछ दिनों की छुट्टियां मुझे करनी पड़े लगातार, बस वो शूटिंग करा के फिर दोबारा से माफ्रम पे आ जाएंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अब रेडियो भी और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा वहां से भी लाइव जो है ना फेसबुक पे वहां से आया जाए, तो इस तरह जो है वो सिलसिला रहेगा। तो NTN म्यूजिक मुंह से निकलता है, न्यूज चैनल म्यूजिक के लिए मैंने बहुत काम किया इसलिए मुंह से म्यूजिक ही निकल जाता है। तो न्यूज जो है, अब जो खबरें लगाने वाला काम भी भाई जो है वो आपका बखूबी अंजाम देने वाला है। और संजू पूछे कब जा रहे, बस जाने वाले, आज शूट थी लेकिन कैंसिल हो गई है, जरा सेट अभी बन रहा है खूबसूरत सा, तो उसको एक दिन और है, मेरे ख्याल से कल भी बन रहा होगा, एक दो दिन में शूटिंग होगी, जब भी होगा मैं बता दूंगा। भाई जनाब इसी बात पर तुम से नादिया तुम क्या लिख, डायरेक्ट इन्होंने वॉइस मैसेज कर दिया, पहले मैं गाना लगाता हूँ फिर मैं सुनता हूँ ये क्या कह रही है। और नेक्स्ट ट्रैक जरा चेक करें आप।

0: हुआ जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं फिर 100 और बहुत शुक्रिया मिस्टर फारूक, यानी मैं मुबारक मुबारक न्यू चैनल में आपको खूब कामयाबी मिले, आमीन सुमा आमीन, बिल्कुल जनाब बहुत शुक्रिया। और नादिया मलिक जी, बस मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप आराम से यूट्यूब पे, वो लाइव चैनल आता है NTN न्यूज चैनल है, लोग NTM बोल रहे होते हैं, M वो पुराने वक्तों का था, NTN N से शुरू होकर NP खत्म हो रहा है। अच्छा जनाब, और थोड़ी जरा तानिया जी जो है वो सुनते हैं। तानिया जी, आपका एहसान, इतने प्यार से मोहब्बत से आप सुनती हैं, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा शो बहुत अच्छा है, हनीफ खोसा साहब न्यू कराची से, हनीफ साई कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? MTM नहीं भाई, NTN यार, बिल्कुल ही पूरा ही गलत सुन लिया तुमने, NTN। संजीदा तुम्हारे कानों का कोई इलाज है, इस उम्र में वैसे यही है, इस उम्र में जो है अभी भी सही नहीं है, एन से शुरू होके एन पे खत्म होगा, आंटी एन पे शुरू होगा और एन पे ही खत्म होगा, NTN। एम कहां से आ गया, मुबारक हो भाई, बिल आखिर बड़ी मुश्किलों से जाना उस समझ में आ गया उनको, चलो तीसरी अटेम्प्ट में जाके समझें कि NTN था। होए होए, अरे इतना मुश्किल। यासुद्दीन बलबन आ गए भाई, गयास कैसे हो, पूरी टीम को सलाम, सुनने वालों को भी सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बस मिसेस फारूक हंसती रहे, मुस्कुरा, बस आपके जो मुस्कुराहट है ना, आप तो सही समझ रही हैं ना, NTN। मुझे लगता है आज का प्रोग्राम ये समझाने में लग जाएगा। अच्छा जनाब, टाइम चेक है और कुछ सेकंड की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: FM 100 टाइम चेक, It's 10 p.m.

0: 1965. FM 247 365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
2: एक्टिव यमी जॉर्ज जबरदस्त. तो सुनो यार.

0: प्यार नहीं आ रहा बंदे को, पता नहीं क्या चक्कर है,
1: जाने
0: कोई ना कोई वजह होगी। अस्सलाम वालेकुम, इफ्तिखार अंसारी कह रहे हैं आयाज भाई आज का शो सॉन्ग ओल्डी सॉन्ग की वजह से मैसेज एक ही करूंगा, सॉन्ग सुनने का शो है। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी इफ्तिखार भाई, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जनाब संजू जी कह रही है कि मजा आ रहा था, इसके अलावा आप इतने अच्छे क्यों हैं, आप खुद अच्छी हैं ना, इस वजह से मैं अच्छा हूं। और इसके अलावा इतना छेड़ती हूँ, तंग करती हूँ, बाप मिस करूंगा। अरे भाई मैं 5-10 दिन, कितने दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए जाऊंगा भाई, आ जाएंगे फिर, आना जाना लगा ही रहा और पता भी नहीं चलता। अच्छा जनाब, अब आ गई है कौन वाला, नौरीन तौसीफ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, नौरीन की तरफ से आपको शो में बहुत सारा प्यार, दिल की गहराइयों से वेलकम और खूबसूरत आवाज, बहुत तारीफें कर दी भाई उन्होंने। अंजलिना, जरी, संजूर और नसरीन सबको दुआएं सलाम दुआ दे दी भाई, बड़ी मेहरबानी। अगला गाना बिल्कुल मैं डेडिकेट कर दूंगा। सुंबल जी क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन अयाज भाई, अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां, खुशियां और बरकतें, आए इतनी सारी दुआएं दे दी आपने, बहुत शुक्रिया। बस भाई दोस्तों, मॉर्निंग शो जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में, वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो इसी तरह आप लोगों ने उसको भी सुनना है और उसमें भी पार्टिसिपेशन, मैं किसी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें भी फोन लाइंस को जिस तरह का सीन हो। और आप लोग जो हैं, जब मैं फेसबुक लाइव आया करूं तो उसमें आप जो है वो कॉल्स कर सकते हैं, आप कुछ इस तरह का सीन है। अच्छा जनाब, माँ जमीन हमें कह के गई थी कि भाई वो एक बार मुस्कुरा दो दरा लगा दो, तो माँ जमीन आपको भी और नादिया मलिक आपको भी।

0: Kad.
1: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं 3636। चाची ने भाई वॉइस मैसेज भेज दिया है, तो मैं जरा चाची की आवाज आपको सुनाता हूँ।
2: कैसे हो? ठीक हो बेटा? खैरियत से? हाँ, मैं शो सुन भी रही हूँ और ये जो कहने जा रही, तो ये नहीं है कि बात कितनी गहरी है और अल्फाज कितने मुश्किल है, इल्म ये है कि बात कितनी जरूरी है और अल्फाज कितने जामे हैं, ठीक है। और अपने आप को ना बिल्कुल नमक की तरह रखना चाहिए कि जहां आप ना हो ना तो वहां आपकी कमी महसूस की जाए। जब खाने में नमक नहीं हो तो खाना कैसा लगता है? बी लाइक ए सॉल्ट। क्या ख्याल है आपका?
1: जबरदस्त
2: चाची, सलाम टू ऑल।
1: वालेकुम सलाम। चाची जी की बातें जब आ जाती हैं शो में तो फिर क्या ही बात है, छा गई है चाची आप। अच्छा जनाब, इसके अलावा उबैर मैसेज कर रहे हैं हमें और इतनी सारी दुआएं उन्होंने लिख के भेज दी हैं और खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं आज भाई। बहुत बहुत तारीफ कर दी भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ, बहुत इस्लाम अयाज भाई, अल्लाह आपको साथ हमेशा आफियत वाला मामला फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अल्लाह के लिए आपसे अब्दुल्ला भाई, बड़ी मेहरबानी अब्दुल्ला भाई, इतनी सारी मोहब्बतें देने का शुक्रिया। बैकग्राउंड पसंद आ रहा है, मैं चला रहा हूँ। शशर मशर समझ में कुछ नहीं आ रहा लेकिन है मजे का। जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, गाने बहुत सारे आज, क्यों शीट हमने टिका के बनाई है।

0: Here we go!
1: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
2: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीन। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: ये प्यास तो सुनो याद
5: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस किए चाहे स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर। चाची बहुत जरा इन हालात में जरा से परेशान नजर आई कह रही भाई जो कंटेनर बाजार में से एक बात है ये जो लॉन्ग मार्च रोकने के लिए ऐसा लग रहा है कि इसराइल और मुसलमानों के दरमियान मुकाबला चल पड़ा। कंटेनर ऐसे उन्होंने ऐसे जोड़े उन्होंने वाह वाह वाह खुदाइयां कर दी खंदके के खुद दी। ऐसा लग रहा है पता नहीं कि मुसलमान आपस में इंडिया वालों के साथ भी ऐसे नहीं लड़ रहे जैसे इनके साथ लड़ रहे। अब सुना कंटेनर में करंट छोड़ दिया, क्या चाह रहे हैं भाई, क्या चाह रहे हो भाई तुम? ऐसे नहीं करो यार, वो भी भाई हैं यार, सारे मिलजुल के प्यार मोहब्बत से यार तुम भी खाओ, उनको भी खाने दो थोड़ा सा। मैंने खाना कह गया, मेरा मतलब है उनको भी काम करने दो थोड़ा। आप तो कर ही रहे हैं इतना काम माशाल्लाह, अवाम का अब जिस तरीके से हाल कर दिया है नहीं संभल रहा यार इनसे, फिर भी वो जबरदस्ती क्या है कि भाई हमें दो, हमसे मुल्क संभले या ना संभले हम संभालेंगे, ये तो वो वाली बात हो गई। लेकिन ये है कि मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह सब सही हो, लेकिन जब तक हालात सही नहीं होंगे हर आदमी खुश नहीं होगा, कैसे तरक्की करेंगे भाई? तो प्यार मोहब्बत से हर चीज को जो है वो टैकल करना चाहिए। हम लोग तो इधर ही बैठ के यही कहेंगे करंट छोड़ रहे हैं, ये खड्डे खोद दिए बेचारे आम लोगों का, देखें यार कितना गुजारा बेचारे मेट्रो वाले वो मोटरवे से जा रहे, कह रहे हैं दो दिन बाद पहुंचे वो, कितनी आम आदमी को तकलीफ हो रही है, जरा उनके लिए सोचे। मैं जो बात करता हूँ वो आम आदमी की बात करता हूँ, महंगाई इतनी बढ़ रही है आम आदमी के लिए वो भी सोचे, पांच पांच दस दस रुपए बढ़ रहे हैं और कम 30 पैसे नहीं करो यार इससे पैसे, मैं बोलता हूँ कि कम क्यों कर रहे हो भाई, 30 पैसे कम करने की क्या जरूरत है यार, खाम खा एयर टाइम भी ले रहे हो आके बैठ के, बोलते भी बंदे को यार कुछ तो मतलब शर्म आनी चाहिए यार कि मैं 30 पैसे कम कर रहा हूँ 60 पैसे कम कर रहा हूँ, क्या औकात है 60 पैसे की यार? जैसे बढ़ाते हो ना जिन पैसों में वैसे कम भी करना चाहिए। आज के लिए इतना काफी दोस्तों। अच्छा जी, आपको कामयाब करे हर काम में देखेंगे मॉर्निंग शो आपका जरी नूर, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब, आपके शो के सभी लिसनर्स के लिए दुआ, हम सब एक फैमिली की, बिल्कुल फैमिली की तरह, इसीलिए जो है ना ये हम अपने दिल की बातें कर देते हैं। अच्छा जी, चाची खुश रहिए, मिस्टर फारूक की तरफ से चाची जी आपके लिए मैसेज। हाय नादिया मलिक, क्यों चौंक रही?

मूड बिल्कुल ठीक। अच्छा जनाब, इसके अलावा मतिया जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की कह रही है कि अल्फाज नहीं मिल रहे तारीफ के, ढूंढो ही नहीं तुम, आपका टाइम जाएगा उसमें। गाने सुने आपको, ये एक और बहुत मेलोडियस ट्रैक मैं आपको सुनाने वाला हूँ।

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: Welcome back to FM 100. A very nice song show. जबरदस्त जरीनूर, बड़ी मेहरबानी. और चाची जी, पाकिस्तानी गाना है, इंडिया वालों ने भी छाप दिया है. मैडम जी का एक बहुत खूबसूरत ट्रैक, मैडम जी की आवाज में भी मैंने सुनाया था उसे पुराने वक्तों में. क्या हाल है नदीम भाई? ठीक है, खैरियत से? नदीम अख्तर साहब तशरीफ ला चुके. तो चाची जी, ये ओरिजिनली पाकिस्तानी गाना है. सॉन्ग ने उदास कर दिया शायरी. तो मैं एक बात बताऊं, शीशा भी हटा लो, वो देख देख के भी तुम उदास हो जाती हो. संजू, बिल्कुल दूर रहा करो, सेट रहा करो बिल्कुल. अच्छा जनाब, माँ जमीन क्या कह रही है? प्यार आ गया है? किस पे माँ जमीन, किस पे प्यार आ रहा है? सलाम आज मालूम, सुन रही हूँ अभी से. लो जी आ गई है रुबाब, आ गई रुबाब. की हाल है? तो आडा तुम ठीक हो? आपकी आवाज और शो सुन रही हूँ, सबको लव यू, सबकी जानिब से लव यू टू. और बहुत सारा प्यार दे दिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका. और नौरिन जी कह रही, मैंने डिनर विनर करके आराम से जो है वो शो जो है वो सुन रही हूँ, बड़ी मेहरबानी सरकार, बहुत शुक्रिया. सलाम अलैकुम, हाजिर अभी आए हैं जॉब से, एंड आते ही गुड सॉन्ग, बस आपको ही सुनते हैं, हैप्पी. और अभी बाकी लोगों को भी सुनो, इतनी मेहनत से वो भी लोग भी शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं करो भाई. अच्छा जनाब, अरे संजू जी क्या बात है, गाने पसंद आ गए. संजू जी को फुल ये गाना पसंद आ गया. और मिस्टर फारूक कह रही है कि नसरीन पटेल नाम तो सुना होगा. नसरीन पटेल तो बिल्कुल सुना. अच्छा जी, पटेल हॉस्पिटल सारे आपके? अच्छा क्या बात है, नसरीन पटेल, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सुना. अच्छा जनाब, कुछ सेकंड की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद.

0: बैटरी पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: facebook.com/fm247365
3: active yummy adorable seven ye pyaas to suno yaar
4: और जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी आपके पहुंच रहे हैं और वो कह रही है अच्छा अच्छा केम चो नसरीन। इसे नसरीन बड़ा जरा पुराना नाम है लेकिन ठीक है, नसरीन के साथ परवीन भी, मैं अक्सर कहता हूँ परवीन मुंह से निकल जाता है, नसरीन का नाम सुनते ही परवीन भी।

欢解答。मैसेज काफी सारे आ गए हैं और हमारी नसरीन पटेल की क्या बात है शो के साथ एक दूसरे से बातें तारीफ आपकी हो रही। अरे मेरी क्या तारीफ, तारीफ उस खुदा की जिसने हम सबको बनाया। अच्छा जनाब एक सॉन्ग इधर भी जल्दी से मैं कर देता हूँ संजू जी फुल टाइम। हाँ बाजमीन खुश रहे, खुश रहे आप। अच्छा जी अयाज मेरी सास भी सुन रही है। अरे सास कैसी हो, रुबाब की सास भी सुन रही है, रुबाब की सास आपको सलूट है, ऐसी बहू।

हुआ जनाब सुन रहे हैं 100 और टाइम जो है बड़ी स्पीड के साथ गुजरता चला जा रहा है। नवेद भाई के मैसेज आ गए, अयाज भाई आपको छोटा भाई सुन रहा है प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त, बड़ी मेहरबानी, छोटे भाई को भी सलाम, ब्यूटीफुल सॉन्ग, आपके शो के लिए जल्दी होती है हमें, वरना इस टाइम कोई और काम नहीं होता, रिलैक्स करते हैं। वैसे आपके क्या खाते हैं? मैं कुछ भी हका लाल का खाता हूँ, वैसे जो भी खाता हूँ सही खाता हूँ, सलामत रहें। चले जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे माँ जमी हंसती रहे, मुस्कुराती रहे आप। अच्छा जी, शायरी भी लिख रही है, बहुत उम्दा शायरी, बिल्कुल संजू जी बहुत जबरदस्त संजीदा शायरी, बहुत कमाल है। और प्लेलिस्ट की तारीफ कर रही है, लवली सॉन्ग, ऑसम सॉन्ग प्लेलिस्ट का, बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी। और भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुनाता हूँ। चाची मेरी क्या कह रही है? अच्छा जनाब ठीक हो गया, मैं आराम से देखता हूँ। अच्छा जी, एक और बड़ा रोमांटिक गाना, जरा चेक करें इसको आप। अच्छा जी, और मैसेज का तरीका मैं आपको बता दूं, क्या चार स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

सुनने दी, बस यही जिक्र होता है बहुत ही रोमांस का डब्बा ज्यादा डालते थे पिछले वक्तों में, इतने रोमांटिक गाने ओए होए होए हो, मुंह में वैसलीन लगा के गाते थे, सुर भी वैसे आते थे, वाह वाह वाह माशाल्लाह, शो बहुत शानदार, आपके बर्जस्ता जुमले गाने, अरे बड़ी मेहरबानी संजीदा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी ऊपर टाइम भी देख रही है, 10:40 हो गए अभी तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, छोड़ो उसको, बस म्यूजिक को एंजॉय करो। एक और बहुत खूबसूरत ट्रैक मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और वो है कैसे

अशिया फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद में नशिया फोर्स के एन वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ

0: फेसबुक मिशन पर। मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकें, आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहिद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। एएनएफ का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: जनाब वेलकम बैक टू एफएम 100। और टाइम कह रहा है कि जरा जल्दी जल्दी बातें करो, जल्दी जल्दी गाने सुनो और इसके बाद नदीम अख्तर को सीट दे दो। क्या कहने, एसएमएस रीड सही किया करो। कौन हो तुम, पहले अपने नाम तो सही से लिखो। कौन हो तुम, हमें डेली लेक्चर या दे रहा है? अच्छा, हम जो है ना लड़की खुद ही बना रहे हैं अभी, हम पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। महा यूसुफ जई, मेरे कभी कभी ये भी लगता है इनके इस तरह के मैसेज आते हैं। अच्छा जनाब, टाइम थोड़ा सा रह गया है, गाने बहुत सारे। देखें यार, ये गाना भी प्ले करना था आज।

मैं जनाब प्यार तो एक दिन होना था, हो गया। आजकल तो दौर बहुत तेज चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा प्यार कितनी दफा हो रहा है। अच्छा जनाब, एक पुराने वक्तों में भी टप्पे वप्पे बड़े मशहूर होते थे, अक्सर लोगों की फरमाइशें आती थी भजन कोई टप्पे वाला गाना लगाते, और शादियों में भी अक्सर ऐसा होता था। तो गयासुद्दीन बलबन हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई अगर कोई शादी वाला गाना लगा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो गयासुद्दीन बलबन, इसी को शादी का समझ लो, थोड़ा सा ये टप्पे मैं आपको सुना रहा हूं।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनो आप सबको। एक बार फिर बता दूं जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक। और एक बजे तक आज हल्ला गुल्ला नहीं होगा। मैंने जैसे कहा आपको कि मैं कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब, तो आज कोई सवाल मैं नहीं करूंगा बल्कि आप करेंगे। आप पूछे कैसे और क्यों, उसका रीजन ये है जनाब कि आज हमारे यहां पर हमने एक अपने मेहमान को मधु किया है जो एक बार पहले भी मेरे शो में आ चुके हैं और दो घंटे फुर करके उड़ गए थे, टाइम का पता ही नहीं चला था। आप लोगों के सवालात इतने थे कि उनके जवाब भी नहीं दे सके। हमारे पाकिस्तान के मकबूल तरीन एस्ट्रोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट कामिल इरफान कामिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
1: वालेकुम अस्सलाम नदीम भाई।
0: सबसे पहले तो बहुत बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए अपना कीमती वक्त निकालकर।
1: आपकी खातिर हम यहां तक पहुंच जाते हैं,
0: यकीन मानिए मुझे बड़ी खुशी।
1: आपकी मोहब्बत यहां तक खींच के ले आती है हमेशा।
0: आपको देखकर जो ना मेरे चेहरे पर पता नहीं क्यों मुस्कुराहट आ जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है।
1: बाकी फैक्ट है हमारे, हम क्योंकि जिस फील्ड से वाबस्ता है
0: जी जी,
1: इसके अंदर ऑरा बहुत काउंट करता है। मींस आपकी जो अंदर बॉडी जो है आपकी पूरी की किस तरह एनर्जाइज होती है, तो ये किसी को कहते हैं कि वो एक शेर भी है ना कि उनको जो देखने से आ जाती है
0: चेहरे पर रौनक, कहते हैं
1: कि बीमार का हाल
0: अच्छा है। अच्छा जनाब, आप सब लोगों को ये बता दूं कि इरफान कामिल भाई हमारे साथ मौजूद है। माशाल्लाह से बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो हैं वो टीवी शोज भी देखते होंगे और इनके शोज भी देखते होंगे। ऑलमोस्ट तकरीबन हर वीक आता है ना सर आपका?
1: एवरी मंडे
0: और एवरी मंडे बहुत पॉपुलर है। मैं खुद भी उसको फॉलो करता हूं, मैं आपको ये भी बताऊं। और इतनी जबरदस्त बातें होती हैं नंबर्स के हवाले से, नंबर कहां कहां घूमते हैं हमारी जिंदगी में, और स्टार जो है एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्टार्स के हवाले से ही होती है। बहुत सारे लोग जो है कामिल भाई, मैं पहले आगाज एक बात से कर दूं और उसके बाद मैं आपको इस हवाले से आपसे कुछ सवाल करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि बहुत से हमारे पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी पर न्यूमरोलॉजी पर
1: बिलीव
0: नहीं करते
1: जी।
0: उनमें से एक मैं भी था,
1: बिल्कुल
0: आप यकीन मानिए था। अब था कैसे कि उसका रीजन ये कि मैं बोलता था जो अल्लाह ताला करेगा जी वही होगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जो है मैं बेसिकली कुछ जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ था तो मैं सिर्फ नेचर ऑफ स्टार्स बताता था कि किस स्टार की क्या नेचर है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स मैं करता था। तो मेरे अंदर एक जो है ना वो तजस्सुस भी था, जस्तुजू भी थी। मैंने पढ़ना शुरू किया तो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, न्यूमरोलॉजी के हवाले से, मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं और इरफान भाई तो खैर मुझे बताएंगे इस हवाले से और भी बहुत कुछ बताएंगे कि कुरान पाक में भी इसका जिक्र है
1: जी, बिल्कुल
0: सितारों का भी जिक्र है,
1: बिल्कुल
0: बुर्जों का भी जिक्र है। और इसका जो है लिंक कहां से कहां मिलता है मैं आपको बता, खैर आपको तो पता ही है कि मैं परेशान हो गया था, मेरी सोच जो है वो हो गई थी कि यार ये कहां से कहां चीज मिल रही है। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है, ये बात करने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल ऐसा सिलसिलाकार होता है, स्टार्स का भी होता है, बुर्जों का सिलसिला होता है, न्यूमरोलॉजी के हवाले से नंबरों का भी होता है। और इससे पहले कि मैं इरफान भाई से सवालात करना शुरू मैं शुरू करूं, आप लोगों के तो आएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक अपने ही घर में एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो नंबर्स पर चलें सारी जिंदगी अभी तक चल रहे हैं,
1: चलते हैं लोग
0: और चल रहे हैं वो, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वो इतने कामयाब हैं
1: बिल्कुल।
0: मतलब उनकी गाड़ी का हर जिंदगी में जितने भी गाड़ियां उन्होंने बदली हैं या गाड़ियां जो उनके पास हैं उनका एक ही नंबर होता है। इसी तरीके से उन्होंने अपने घर का नंबर, अपने फोन का नंबर और ये तमाम चीजें उन्होंने, मैंने आपसे जो लास्ट प्रोग्राम हुआ था
1: जी जी,
0: उसके बाद मैंने ये बात नोट की है।
1: बिल्कुल
0: वो मेरे भाई हैं बड़े,
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: तो मैंने ये बात नोट की, मैंने बोला क्योंकि आपने इस हवाले से कहा था कि ये चीजें बड़ी काउंट होती हैं। तो आप लोग जितने भी मेरे सामने सुन रहे हैं वो मैसेजेस कर सकते हैं कि एचआई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसको सेंड करेंगे 3636 पर। उसके साथ साथ मैसेंजर्स पर भी मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे से लिसनर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों से हमें सुन रहे होते हैं और मैसेजेस करते हैं मैसेंजर पर, वो भी कर सकते हैं मैसेज। और इस मौके का भरपूर तरीके से फायदा हम उठा सकते हैं कि आज हमारे शो में इरफान कामिल भाई मौजूद हैं। तो सर, क्या है ये न्यूमरोलॉजी, क्या है, व्हाट इज द न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा सा एक खुलासा पेश कर दीजिए, फिर लोगों के सवाल आना शुरू हो जाएंगे।
1: सबसे पहली बात जो आपने बहुत जबरदस्त बात कही, मैंने आपकी पूरी गुफ्तगू सुनी और उसके अंदर से मैंने एक लफ्ज पकड़ा
0: जी,
1: और वो लफ्ज था कि जब मैंने पढ़ा
0: जी,
1: पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है
0: जी।
1: जो आपने कहा ना बिलीफ, बिलीफ क्या है सिवाय एक चीज के, वो ना पढ़ने की जरूरत है ना उसको देखने की जरूरत है, वो है अनदेखा यकीन
0: अल्लाह की जात पर, बेशक
1: उसके लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है,
0: बेशक
1: उसके लिए आपको यकीन करना है
0: बिल्कुल।
1: कुछ लोग जब कहते हैं ना हम के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये काम किया
0: जी,
1: अब आप कहते हैं मैं भी आजमा के देखता हूं, ये है ईमान की निचली सतह,
0: निचली सतह,
1: ऊंची सतह ये है कि बस मुझे ये करना है क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया,
0: बेशक
1: गलत हो ही नहीं सकता।
0: बात की बहुत प्यारी,
1: पढ़ना पढ़ना बहुत जरूरी है
0: जी जी।
1: मैं जितने लोग हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूं अपने बिलीव्स के साथ रहिए, कोई नहीं आपको कह रहा अपने बिलीव्स को छोड़िए, लेकिन एक बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है जिंदगी का
0: जी,
1: और वो फॉर्मूला ये है कि कोई सा भी ऐसा इल्म जो चाहे जितना ही शरीयत के नजदीक हो, चाहे जितना ही आपके रिलीजन से करीब हो, अगर वो आपको अल्लाह से दूर कर देता है
0: वाह वाह,
1: तो वो शर का है,
0: वो शर का है।
1: लेकिन चाहे जैसा भी इल्म, चाहे वो साइंस है, चाहे वो कोई टेक्निकल है, चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, आपका कोई और साइंस है, अगर वो चीज एडॉप्ट करने के बाद आप अल्लाह से नजदीक तर होते चले जाते हैं
0: जी जी,
1: इसका मतलब है वो खैर का इल्म है।
0: वाह वाह,
1: ये बहुत आसान फार्मूला है,
0: बेहतरीन फार्मूला है जनाब, यही फार्मूला।
1: तो मैं जब से इस चीज के अंदर ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अल्लाह का एहसान मानता हूं कि ये मुझे मदीने शरीफ में ये अल्लाह ने ये अता किया
0: जी जी,
1: तो उस वक्त से लेके आज तक जिंदगी बदल गई। अल्लाह ने बुरी आदतें जहां
0: बुरी आदतें
1: निकाल दी,
0: बिल्कुल।
1: जब आपके अंदर से बुरा इंसान आपका अपना हमजा जब निकल रहा है ना इसमें से, तो इसका मतलब है आपकी करेक्शन हो रही है,
0: करेक्शन हो रही है।
1: अगर आपके अंदर बुरी चीजें अडॉप्ट हो रही है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर फिर अल्लाह की नजर इनायत नहीं है,
0: बेशक।
1: तो अता में और सीखने में यही फर्क है,
0: यही फर्क है, वाह वाह।
1: अता जब आती है तो वो हम जैसे, मैं जिनके साथ एक मेरे उस्ताद थे
0: जी जी,
1: जिनके साथ में थोड़ा अरसा मैंने इस सिलसिले में इल्म हासिल किया,
0: सोबत हासिल की,
1: सोबत हासिल की उनके साथ, वो मुझे एक ही बात कहते थे और वाकई ऐसे ही है। उन्होंने कहा था कि जो तुम इस वक्त जिस चीज में जा रहे हो ना, इसमें तुम अपने लिए कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन जो तुमसे अटैच होंगे ना वो हर चीज उनको मिलेगी।
0: ये बहुत,
1: और ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ,
0: ये एक बहुत जबरदस्त बात
1: है, चीजों से मैं बेनिफिट नहीं ले पाता हूँ।
0: क्या बात है, ये मैं ये बात
1: मैं बिल्कुल क्लियर कर,
0: ये सवाल भी था मेरा और आपने उसी हवाले से खुद ही बता दिया। लेकिन सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक आपसे ब्रेक चाहूंगा, एक छोटी सी ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अ us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: वेलकम बैक कहेंगे जनाब। और इरफान भाई एक बात बताऊं, आप यकीन माने जब आप लास्ट टाइम भी तशरीफ लाए थे और अभी भी आए, दिल कर रहा आपसे बातें करता रहूं और कुछ भी नहीं।
1: कहते हैं कि शायद वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता हूं, खरबूजे तो हो नहीं सकते अब लेकिन आपकी अच्छी सोबत की वजह से शायद मैं।
0: अरे क्या बात कर रहे हैं यार, कानों को मैं हाथ लगा लूं, आपकी सोबत में हम कुछ सीख लेंगे। तो हम बात वहीं से जहां से सिलसिला मुनकता हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप बात कर रहे थे सतार भाई, थैंक यू वेरी मच,
1: लव यू, लव यू, जज़ाकअल्लाह खैर
0: जी। तो क्या बात कर रहे थे जनाब?
1: हम इसी पे बात कर रहे थे कि जो लोगों के बिलीफ्स के ऊपर बात कर रहे थे। बिलीफ क्या है? अल्लाह ने आपको बहुत सारे रास्ते दिए
0: जी जी,
1: और जब हम बात कर रहे थे नंबर्स की
0: जी,
1: मुझे ये बता दें कि आप बिलीव मत करें नंबर्स के ऊपर। और मैं छोटी सी बात कहता हूँ, जो बिलीव नहीं करता नंबर्स के ऊपर वो बाजार में जाए और क्या मुझे एक शूज की शॉप पे जाए, वो क्या मुझे एक जूता खरीदना है अपने लिए और जाके क्या मुझे एक जूता दे दो, अगला सवाल क्या होगा उसका?
0: आपके पाँव का नंबर क्या है?
1: नंबर क्या है? आप गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन की लेके रोड पे निकल आए, ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोकेगा तो क्या पूछेगा?
0: तुम्हारी गाड़ी का नंबर,
1: रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है?
0: गाड़ी का नंबर क्या है?
1: गाड़ी का नंबर क्या है? आप किसी कॉरपोरेशन को ज्वाइन करते हैं, किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं, वहां सबसे पहली चीज अगर आपको अलॉट होती तो वो क्या? एम्प्लॉई आईडी।
0: वो भी नंबर्स पे,
1: वो भी नंबर्स पे। हमारी जिंदगी कायनात पूरी नंबर्स के ऊपर है। कुरान हमारे 30 सिपारे हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: क्यों हमने एलोकेट किया कि एक सिपारा 1, 2, 3, 4
0: नंबर्स पर,
1: फिर उसके अंदर आयतें कितनी, हर आयत का एक नंबर है,
0: नंबर है।
1: हम उसी से आइडेंटिफाई करते हैं
0: कि
1: सूरह आल इमरान है, सूरह अल माईदा है, सूरह मुजम्मिल है, सूरह अल काफिरून है। क्यों है ये? इसलिए कि नंबर कायनात है
0: बेशक,
1: और यही कनेक्शन अगर आपने अपना जोड़ लिया कायनात के साथ तो आप हर वो चीज हासिल करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर कायनात के अंदर मनफी और मस्बत, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजें कैरी हो रही हैं।
0: वाह वाह।
1: आपको सिर्फ एक लाइन है, जिस तरह हम कोई चीज लिखते हैं और उसके अंदर हम एक तरफ लिखते हैं पॉजिटिव, एक तरफ लिखते हैं नेगेटिव, बीच में एक लाइन है। अब आपको फैसला करना है कि किस लाइन की तरफ जाना है। ये फैसला
0: कहां कहां क्रॉस करना है,
1: ये जो फैसला है, ये फैसले के लिए हमारे जैसे जो नाकिसुल अकल इंसान है उनकी कहीं मदद ली जाती है और लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: हम लोग बहुत सारी जगहों के ऊपर जाके, किसी एक बच्चे का एडमिशन होगा ना तो हम चार स्कूल घूमते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा, नहीं पूछे हम कहे अल्लाह को यही मंजूर था, जिस स्कूल में चाहे दाखिल करा दो। क्यों? तहकीक करते हैं ना,
0: तहकीक करते हैं
1: हम, कहते हैं कोई अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी हो जाए, वो चार डॉक्टर पूछता है कि कौन सा अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है, कौन सा अच्छा न्यूरोफिजिशियन है।
0: हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट बहुत सारे,
1: बहुत सारे आप जाएं किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में जाकर ट्रीटमेंट करा लें,
0: करा ले।
1: आप क्यों जाते हैं? इसलिए कि आप तहकीक करते,
0: तहकीक करते हैं।
1: तो कुरान भी कहता है कि जो हमने तुम्हें दिया है तुम इस पे तहकीक करो,
0: तहकीक करो। बेशक
1: सूरह रहमान, अगर मैं लोगों को कहता हूं आपको पूरा कुरान नहीं पढ़े ना तो सिर्फ सूरह रहमान की तफसीर पढ़े कि सूरह रहमान क्या कह रहा है
0: जी।
1: सूरह रहमान के अंदर मैं सिर्फ, लोग कई दफा मुझसे बड़ा क्वेश्चन होता है कुछ
0: जी,
1: लोगों का
0: जी, जी।
1: वो कहते हैं हमारे स्टोन्स पे बिलीव नहीं है, होता है मेरे पास आते हैं बहुत सारे सवाल
0: जी, जी।
1: मैं कहता हूं कि आपका बिलीव नहीं है ना, सिर्फ आप कुरान सूरह रहमान पढ़ें और सूरह रहमान के अंदर तीन चीजों का जिक्र है, मोती, याकूत, मरजान,
0: मरजान,
1: ठीक। और उसके आगे फिर आता है फबे ये अलाय रब्बे कुमा तो कज़्ज़बान, और तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अब मैं कहता हूं सिर्फ ना झुटलाने के लिए ही पहन लो, कुरान के अंदर जिक्र है तो इसका कोई फायदा होगा।
0: अच्छा, इसमें इसके स्टोन्स के हवाले से भी
1: जी,
0: हम
1: जी,
0: एक सेगमेंट रखेंगे
1: जिनके
0: काम ये करते हैं कि हम सेगमेंट्स बना लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आपका जो तजर्बा है, जो आपका इल्म है, वो इतना माशाल्लाह से वसी है कि हम बहुत मुश्किल होगा कि 2 घंटे में हम इसको समेट सके। तो हम 12 बजे तक जो है हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के हवाले से,
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: या एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कर लेते हैं
1: जी,
0: फिर हाफ आवर हम दे देंगे न्यूमरोलॉजी को और हाफ आवर हम स्टोन्स को देंगे। तो इस हवाले से आप सबको भी मैं बता रहा हूं कि आप लोगों ने जो सवालात करने हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, सवाल अगर करने हैं। अच्छा, एक और भी बात कि अगर किसी ने कुछ पूछना हो,
1: पूछना हो, प्लस मैं आज आपकी तवस्सुत से, माशाल्लाह आपका प्लेटफॉर्म है ये बहुत जबरदस्त, और उस पे ستم ظریفی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کے صحبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
0: جی جی
1: کہ آپ لوگوں کو جن لوگوں کو اسپیشلی کوئی ڈیزیز ہیں وہ بھی بات کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ اس کائنات کے اندر اللہ نے شفا کا ذریعہ صرف ایلوپیتھک ہومیوپیتھک یا ویدک اسٹرالوجی ویدک نہیں رکھا ہے, جیسے ہم حکمت کہتے ہیں,
0: حکمت کہہ رہے ہیں,
1: اس کے علاوہ بھی اللہ نے بہت ذرائع رکھے ہیں. اور اگر آپ پاسٹ میں جائیں تو روشنی سے رنگوں کے ساتھ علاج کیا جاتا تھا
0: جی,
1: اور اس کی بہت بڑے یعنی پاسٹ میں اگر دیکھیں تو ساری ڈیزیز ٹریٹ ہوتی تھیں
0: جی.
1: تو اس سلسلے میں بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. آپ کی برتھ کے اندر ہی آپ کی بیماری ہے, آپ کی برتھ کے اندر ہی آپ کی لک ہے, آپ کی برتھ کے اندر ہی آپ کا پورا لائف پاتھ ہے,
0: لائف پاتھ ہے. اچھا, تو آپ نے اگر کچھ پوچھنا ہو تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ بتانی ہوگی, دن مہینہ اور سال, نمبر ایک, اور نمبر دو, اس کے علاوہ یہ لکھنے کے بعد آپ نے کیا پوچھنا ہے, آپ نے بیماری

0: अच्छा जी, ये भैया मैं फलक फलक बात कर रहे हैं। फलक बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आपके दोस्त सुनते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहूंगा कि आप शो के हवाले से या कुछ कहने के हवाले से अगर आपने कोई बात करनी हो तो वो हम इंशाल्लाह ताला कल के शो में कर लेंगे। आज जो है हम भरपूर तरीके से फायदा उठाएंगे। इरफान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और एस गुल अगेन मैसेज आपका आ गया है, और चाहत आ गई हैं, और आपको वेलकम कहा है चाहत ने, और अमीन भाई मेट्रोवेल से आए हैं और उन्होंने डेडिकेशन का कहा है, और इरफान भाई को मेरा सलाम।
1: इरफान
0: भाई ने पहले भी जो बताया बातें बताई थी वो सब सच्ची थी, ये सबा गुल कह रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ मैसेजेस और हमारी प्यारी सी चाची भी आई हुई हैं, और मेरा स्टार सेक्रेटेरियस है 18 दिसंबर को, काइंडली टेल मी द थिंग्स, ये हमारी चाची कह रही हैं
1: जी।
0: अच्छा चाची, इसमें इसमें साल का भी जरूरी है
1: जी, बिल्कुल।
0: ये आपने 18 दिसंबर तो बता दिया लेकिन साल भी बहुत
1: और
0: जरूरी,
1: आपका नाम भी बहुत जरूरी है।
0: नाम तो पता मुझे, यास्मीन नाम है चाची का नाम। और सलाम टू ऑनरेबल गेस्ट,
1: सबको
0: भी सलाम। मजाहतन चाची ने एक सवाल किया कि मैं आरजे बन सकती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा जी, संजू भी आ गई हैं, थैंक यू वेरी मच संजू आने का, और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह पाक हमेशा आपसे राजी रहे। बहुत सारी दुआएं दी हैं उन्होंने। और अच्छा जी, पिछले शो की उन्होंने बेहद तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया, और कहती हैं कि इंशाल्लाह इख्तिताम तक साथ हूं। 26 अक्टूबर यानी कि बुर्ज उकरब, क्या कहते हैं तारीख पैदाइश से काम चलेगा या अगर मुमकिन हो तो तारीख पैदाइश से तो
1: जी चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वो दीजिए आप।
0: अच्छा मैं इनका लिख लेता हूं कि इन संजू ने बताया है 26 अक्टूबर, ठीक है जी, और हमारी चाची ने बताया है, वो भी मैं लिख लेता हूं। इनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, उनके देखने से
1: उनके देखने।
0: अच्छा वो इसी शेर को उन्होंने दोबारा जो है, और चाची ने बताया था जनाब 18 दिसंबर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ मैं मैसेज अभी छोटे से लिंक में मैं ये मैसेजेस पढ़ूंगा। अयूब लाला भी आ गए हैं, और आपको बेहद खुशामदीद कहा है उन्होंने, दिल की गहराइयों से सलाम भी कहा है, थैंक यू वेरी मच अयूब आफरीदी भाई। और हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ, ये फैसलाबाद में होती हैं, और इन्होंने बताया जी 9 जून, ठीक है जी, 9 जून बताया है, और इनका नाम है नौरीन तौसीफ, ठीक है जी, क्योंकि आपने बुरा नाम भी पता होना चाहिए। फ्यूचर के बारे में और स्टोन के बारे में इन्होंने पूछना है, ठीक है जी
1: जरूर।
0: और ठीक है जनाब, और जनाब सितारा शेख भी आ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, शो पसंद आ रहा है उनको। अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी आए हैं, और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, जनाब आपका वही वाला मैसेज है, तो शो के इरफान भाई से अगर कुछ आपने पूछना है तो जरूर बताइएगा, और आपको संजू ने यानी कि संजीदा साहिबा ने खुश आमदीद भी कहा। अच्छा ये मैसेजेस अभी मैं सिर्फ इतने ही रखूंगा, और इरफान भाई को सलाम, ये कह रही है हिना गुल, और ओके जी ओके, फलक कह रहे हैं, फलक कह रहे हैं कि 6 तारीख और चौथा महीना,
1: राइट, 6 अप्रैल,
0: 6 अप्रैल है, और 2005 और फलक, बस अभी मेरा ख्याल है फिलहाल इतना ही। और जरीन नूर भी आ गई है मेरी प्यारी सी बहन, उन्होंने भी आपको बहुत बहुत सलाम कहा है। अच्छा इसी मतलब इस 1 आवर में हमने ये सारा सिलसिला रखना है, तो अभी मैं चाहूंगा सिर्फ एक का बताइए आप, ठीक है, क्योंकि हमने एक छोटी सी ब्रेक की जानी भी जाना है, तो सबसे पहले हम चाची की बात कर लेते हैं। 18 दिसंबर बताया, इनका नाम यास्मीन है।
1: यास्मीन है, पहली चीज तो ये कि मैं लोगों को कह दूं कि एक बात मैं हमेशा कहता हूं, हर जगह लिखता भी हूं कहता भी हूं
0: जी,
1: कि वल्ला आलम बिस्सवाब, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है,
0: बेशक बेशक।
1: मैं जो बात करता हूं वो सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन पावर जो अल्लाह ने मुझे अता की है, और दूसरा साइंसी जो बेसिस होती है उन पे मैं हमेशा बात करता हूं
0: जी जी।
1: तो जो अभी बताया कि जैसे 18 दिसंबर
0: जी, 18 दिसंबर
1: इनकी मैं शख्सियत को कम
0: बताइए बताइए
1: डिफाइन कर दूं।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: पहली चीज तो ये है कि ये यास्मीन आपने नाम बताया
0: जी जी।
1: आपको मैं बताऊं कि अगर इनका नाम थोड़ा सा करेक्टेड होता ना तो ये बहुत हाइटेड पर्सनालिटी थी, लेकिन अभी भी स्टिल ये मैं आपको बता दूं, शी इज विद वेरी लीडरशिप क्वालिटीज नंबर 1, यानी ये कहीं पीछे रह के कोई काम करना पसंद नहीं करती, हमेशा लीड

0: अपनी फैमिली के अंदर भी हर चीज की रिस्पॉन्सिबल, जैसे कहते हैं ना कि आप पूरी फैमिली के, चार फैमिलीज भी है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे डाल दें, तो ये शी वेरी परफेक्ट लीड करेंगी उसको।
1: अच्छा, ये थोड़ा सा इनके बारे में मैं जानता भी हूं, ऐसा है।
0: दूसरी चीज दूसरी चीज के अपनी कमिटमेंट की बहुत पाबंद खातून है, अपनी जो कमिटमेंट कर लेंगी उससे पीछे नहीं, कभी भी विदड्रॉ नहीं करेंगी, चाहे उसके लिए इनको फाइनेंशियल लॉस हो चाहे मॉरल लॉस हो, कुछ भी हो उसको उन्होंने ओन करना है। टाइम करेक्शन इज वेरी गुड, यानी आप इनके साथ टाइम कमिटमेंट, अगर आपने 10 बजे कह दिया तो फिर 10 बजने में 5 मिनट पे ही अवेलेबल हैं, उसके बाद
1: नहीं
0: तो आप सुनेंगे कि आप लेट हुए हैं।
1: आप लेट हुए हैं।
0: चौथी चीज, शी इज अ वेरी वेरी गुड शेफ, यानी बहुत जबरदस्त कुकिंग करती हैं। बेहतरीन बेहतरीन
1: के हाथ की कुकिंग,
0: हाँ बेहतरीन किस्म की कुकिंग करती हैं। और अगर इसी को ये प्रोफेशन बना लें तो कामयाब है, ये इनके लिए बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है। अगर शेफ की साइड अगर ये पूरी तरह ऑन करती हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से कामयाब है। अब कुछ अच्छी बातें कह दी तो अब एक दो बुरी भी बता सकते हैं।
1: बुरी अभी नहीं बताएंगे, हम ब्रेक के बाद बताएंगे।

0: फिल्मी रहते तो सुनते रहते हैं ना, वो तो हम उनको सुबह शाम सुनाते रहते हैं वो तो।
1: अच्छा, ये हमारे इस्लामाबाद के एक बड़े फेम शायर हैं डॉक्टर शहबाज अंबर राजा साहब, ये भी मेरी, ये भी यूट्यूब पे भी काफी गजल वायरल है, और मतलब इसको मैंने कोशिश की है कि जैसी उसकी शायरी उसी के हिसाब से उसको कंपोज किया जाए, तो वो आपकी समातों में नजर करता हूँ।

0: वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। सईद अहमद को जानते हो? सईद साहब जो सिंगर है नॉर्थ में।
1: जी जी जी बिल्कुल, सईद भाई को जानते हैं।
0: हाँ, सईद भाई के मैसेज है। सईद भाई हमारे 80s के दोस्त हैं।
1: माशाल्लाह क्या बात है।
0: 80s में क्योंकि सिंगिंग, म्यूजिक, सिंगिंग ये सब चीजें मेरी शुरू से मेरा रहा है सिलसिला, तो सईद भाई से हमारी जो 80s से मतलब मेरी उनसे दोस्ती, और अभी मैं देख भी रहे हूँ, कहते हैं सलाम अलैकुम शोभी साहब, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन आमीन। खादिम भाई बहुत अच्छे सिंगर है, मेरी सलाम दुआ रहती है और कभी कभी मुलाकात भी हो जाती है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: माशाल्लाह बेस्ट परफॉर्मेंस, माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब, माशाल्लाह थैंक यू सईद भाई। और माशाल्लाह बड़े दिनों बाद आपने देखा है, एक लंबा गैप आ गया, वरना अमूमन कभी कभी आप प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम सुन रहे होते थे, और आपसे मुलाकात को भी काफी अर्सा हो गया, अब तो कभी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। तो अतीत से क्योंकि हमारा उस वक्त मतलब बचपन भी था और शौक भी ज्यादा रहा, बड़ा स्टेज करना ये करना, तो इनके साथ बहुत बहुत ज्यादा हमारा रहा।
1: जी जी।
0: तो अच्छा मैं एक क्योंकि सब बैंजो में होते थे, बैंजो बजाते थे साथ, सईद भाई गाते थे, फिर एक हारमोनियम पे होते थे, चांद साहब हमारे ड्रम बजाते थे, तो मेरा अपना म्यूजिक क्लब था उस वक्त मेरा।
1: अच्छा।
0: पूरा बैंड बैंड पूरा कम्प्लीटली बैंड था मेरा, तो हमारा बस म्यूजिक में क्या
1: बस
0: क्या
1: वो तो आपको पता कि टाइम टाइम की बात है, टाइम जैसा टाइम होता है।
0: अच्छा पता है, इस फील्ड में मैंने शोबिज की दुनिया की फील्ड में खासकर म्यूजिक में उस दौर में लोगों ने मेरा मेरी चीजें बहुत खाई हैं, आप यकीन करें।
1: अच्छा।
0: मतलब मेरे ड्रम खा गए, गिटार बेच के खा गए, चीजें सारी मेरे, किसी को सामान नहीं, सामान सारा मेरा होता था, क्लब मेरा था, मैंने बनाया था, सामान मेरा होता था, सारे आगे परफॉर्म करते तो बाद में चीजें भी लेके खा जाते थे, ये लेके ये हो गया, फलाना हो गया, दिमाग हो गया, ये रहा है बस। उसके बाद तो मैं फिर जो मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कहा बस छोड़ भाई, बहुत हो गया भाई
1: जी,
0: छोड़ तो सारी। अच्छा फील्ड में ज्यादातर यही रहा, शुरू में बड़ा रहा और बड़ा, उसके बाद भी बड़ा सिलसिला रहा, क्योंकि मुझे इस फील्ड में अगर देखा जाए, शोबिज की दुनिया में देखा जाए मुझे, तो तकरीबन कुछ 36-37 साल तो मुझे हो गए इस फील्ड में, तकरीबन 30 साल तो मुझे यही हो गए, 31 साल तो रेडियो पे, रेडियो से पहले मतलब लाजमन 84, 85, 83,
1: बड़ा लंबा ड्यूरेशन है।
0: तो मैं उस वक्त से मतलब स्टेज का, फिर कैसेट्स का, फिर सिंगिंग का, म्यूजिक बजाने का, मैं खुद जो है अब तो मैंने बहुत अच्छा होकर छोड़ दिया, सिंगिंग छोड़ दी सारी, मतलब प्रैक्टिस छोड़ दी। मैं उस साथ मिदिस खान साहब के बड़े भाई पंडित गुलाम कादिर खान साहब बागा गंडा शागिर्द हूं मैं, पंडित गुलाम
1: कादिर,
0: या यकीन कर खुदा किस्म कि मैं
1: बहुत
0: मैं, और फिर उनके बाद उस साथ तजमुल हुसैन खान साहब का,
1: हाँ जी
0: इधर तीनटी में रहते थे
1: जी, जी
0: खान साहब उनका मैं, और जब उनका वो
1: दौर, तो यार आपको तो बड़ा कूल माइंड होना चाहिए फिर।
0: नहीं मैं बड़ा कूल माइंड, अल्लाह के शुक्र बड़ा कूल माइंड हूँ। असल में पता खादिम में पता क्या, खादिम पता कि आजकल हालात यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं कि बस वो अब क्या करें, पर ऐसे लाइव है तो बड़े, मगर मैं पता खान साहब का दोनों, और मैं उन कभी जिंदगी रहे ना, मैं आपको मैं पुरानी तस्वीर आपको, पंडित साहब के साथ मेरी तस्वीर मेरे क्लब में बैठे, मेरे साथ वो बैठे हमारी इसमें, तो मैं आपको तस्वीर कभी पुरानी तस्वीर।
1: अच्छा पंडित साहब के बारे में बताइएगा जरा सा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब 2000 में मैं कराची आया हूँ तो खान साहब मेहदी हसन साहब ने, ये मैं आपके तवस्सुल से बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं आया था, मैं और मेरी फैमिली का खाना खान साहब ने बनवाया था घर पे, क्योंकि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का हमारे घरों में आना जाना भी था, तो उस हवाले से खान साहब से तो मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। मेहदी हसन साहब की बात कर रहा हूँ, पंडित साहब को मैंने नहीं देखा है, उनके बारे में सुना बहुत है, मैं उनके बारे में थोड़ी आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ।
0: मेरी उनसे ये है कि मैं मतलब मैं जब उनका शागिर्द हुआ था तो आसिफ हसन भी साथ होते थे हमारे, मेरे साथ होते थे
1: जी,
0: और उनके बाजे पे रियाज भी उनके बाजे पे करता था मैं, और उनकी इस गुद्दी पे मैंने उनके उनके थप्पड़ भी उड़े खाए मैंने।
1: अच्छा।
0: जरा सा उंगली से यूं, जरा सा यूं हो जाए ना, बस थर्ड पड़ता था पीछे आके वो।
1: अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं ये कर रहा हूँ कि उनको पंडित क्यों बोलते थे, इस्माइल साहब तो उनका नाम था, पंडित क्यों बोलते थे?
0: पंडित तो एक बहुत ही कहते बहुत ही महान खिताब है जो इंडिया से दिया गया, वो पंडित तो बुलाते नाम तो इस्माइल।
1: अच्छा ये इंडिया की तरफ से उनको,
0: इंडिया की अभी का थोड़ा पाकिस्तान में थोड़ा था, ये तो इंडिया से उनको मिला था पंडित, पंडित साहब पंडित का खिताब तो उनको, नाम तो उनका इस्माइल था मगर वो बेसिक पंडित जो उनको मिला वो तो इंडिया से बाकायदा उनको खिताब मिला था, ये बाकायदा तौर पर آفیشیلی وہاں سے آفیشیلی وہاں سے خطاب دیا.
1: ویری گڈ.
0: پنڈت ہی تو اسی لیے وہ پھر وہ پنڈت کے نام سے پنڈت
1: جی جی ان کو ساری دنیا پنڈت ہی بولتی ہے.
0: پنڈت کے
1: اسماعیل
0: پنڈت پنڈت پنڈت وہ رہا سب تو یہی وجہ تھی وہ شروع سے. مگر بڑے بہت ہی کہتے نرم مزاج بڑے کول مائنڈ محبت کرنے والے شفقت والے بڑے. مگر جہاں آپ نے ذرا سا کام ان کی سمجھ کے تھوڑا سا آؤٹ کر دیا تو وہاں پھر وہ کچھ پھر اس کے علاوہ کوئی برداشت نہیں پھر کوئی برداشت نہیں.
1: صحیح.
0: پھر ذرا سا اگر کہیں آتے جاتے باجے کو کہیں آپ نے باجا پھلانگ دیا یا باجے کو یوں کر کے چلے گئے یا ذرا سا پاؤں یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا تو بس پھر اس کے بعد پیشاب.
1: یہ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے اگر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو ویسے بے ادبی میں آتا ہے.
0: یہ تو ویسے مگر میں اس وقت بتا رہا ہوں یہ تو میں جب ہمارا بچپن تھا جب شروع کی بتا رہا ہوں اس وقت بھی ایسا تھا گھر کے اندر کیونکہ میں تو ان کے گھر میں جاتا تھا گھر میں ہوتا تھا تو ان کے کمرے میں بیٹھے اوپر بیٹھے تھے
1: جی.
0: تو آصف حسن بھی ماشاء اللہ آصف حسن تو شروع میں آصف حسن تو ایسی رہی کہ جب ایف ایم ہمارا شروع ہوا آصف تو کوئی گانا آصف کا نیا جب ریکارڈ ہوتا تھا تو وہ باقاعدہ اس کے کیسٹ میرے گھر پہ دے جاتا تھا ریڈیو پہ چلانے کے لیے باقاعدہ پہلی اس کا گانا جو ہے کوئی بھی گانا پہلا ریکارڈ ہمارے ایف ایم سے جاتا تھا انہیں جاتا تھا گانا دور بس سارے آصف تو دو تین بار آ بھی چکا آصف میرے نائٹ شو میں بھی آ چکا.
1: کیا بات ہے.
0: نائٹ شو بڑا بہت زبردست ماشاء اللہ بہت زبردست. اچھا جی اس کے بعد پھر سعید بھائی کیا کہتے ہیں جناب شوبی صاحب نے جو بھی کہا وہ بالکل درست کہا ہے
1: جی.
0: میں نے جو کہا وہ پرانی جو یاد
1: جی جی جی بالکل صحیح بات ہے. سعید بھائی بھی ماشاء اللہ پرانے آدمی ہیں.
0: ہمارے ساتھی کہنے بتا رہا ہوں جب یہ جبھی کی بات ہے ہماری کہ جب اسی دور کی بات ہے ساری ساتھ ساتھ
1: بالکل ایسا ہی ہے
0: جی. خادم بھائی اب اس کے بعد پھر ان شاء اللہ
1: استاد غلام علی صاحب کا گایا ہوا 92 کا ایک البم اور اس غزل کو بھی کم لوگ گاتے ہیں بلکہ میں نے تو کسی سے بھی نہیں سنا ہے. یہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں.

0: अब आप मुझे बताइएगा कि इसका सम जो है बातें पे रखना है या राज पे रखना है? आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर?
1: राज की बातें
0: यहां रख लें। साबिर साहब की गजल है ये।
2: साबिर जफर साहब
0: जी जी।

0: ברוך שובצאת.
1: Thank you.
2: ברוך שובצאת.
3: अच्छा ये वाकई मैंने आप ही सुनी है, वरना इतने सारे गजल के लोग आते रहे, ये गजल मैंने
2: किसी नहीं सुनाएगा सर,
3: नहीं सुनी,
2: मुश्किल पड़ती है।
3: हाँ वही मैंने आप ही सुनी है, और इसके अलावा वैसे गुलाम अली खान साहब की आवाज में भी सुन रहा हूँ मैं, मगर आपसे सुन मगर है बहुत जबरदस्त
2: जी जी बिल्कुल ऐसी
3: शायरी बड़ी जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। वाह वाह। इसके बाद क्या सुना रहे फिर हम? इसके बाद सईद भाई क्या कहते हैं? सईद भाई कह रहे हैं मेरी पंडित साहब से भी मुलाकात रही है, और खान साहब मेरी साहब से भी मुलाकात रही है, उनके घर पे अक्सर मुलाकात रही है मेरी। और खादिम हुसैन भाई ने जो भी काला गाया एग्जिट बहुत खूब,
2: बहुत शुक्रिया सईद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
3: चले भाई सईद भाई माशाल्लाह, कहते हैं फन वाला जब सुनना हो ना फिर और ज्यादा।
2: हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही,
3: बारीकियों से ढूंढ रहा होता है उसमें से।
2: बिल्कुल सही बात है,
3: ये तो हकीकत है। चले माशाल्लाह, इसके बाद अब क्या सुना रहे हैं?
2: इसके बाद भी अभी अभी चूंकि पहले मेहदी हसन साहब का उस्ताद जी का चल रहा था, अब चूंकि गुलाम अली साहब को शुरू किया तो उनकी भी एक ऐसी गजल आपकी समातों की नजर करना चाहूंगा कि जो नहीं कोई गाते हैं, है फेम है ये भी। जी शाह मेरे हम दूसरा

0: खूबसूरत, वाकई ये सुन के लगे ट्रैक चल रही है।
1: थैंक यू,
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत,
1: थैंक यू,
0: मजा आ गया, बहुत खूबसूरत भाई। सईद भाई आपने यकीन सुन ली भाई, आपकी फरमाइश देख लें, मैं फौरन पूरी कर दी क्योंकि मेरी फरमाइश, मुझे भी पसंद है बहुत गजल। मैं अमूमन अपने नाइट के गजल के प्रोग्राम में अमूमन ये गजल प्ले करते ही रहता हूँ मैं, और सालों से प्ले कर रहा हूँ। ये इंडिया में जब शामिल हुई थी गजल, ये जब हमारा एफएम शुरू हुआ था ये जी। अब इसके बाद अब क्या शामिल कर रहे हैं, कुछ एक तो फिल्मी गाने में है तो कुछ शामिल करें, खान साहब के मुजीब आलम साहब, मुजीब आलम भी हमारा बड़ा खूबसूरत बाबा, अच्छे दोस्तों होते हैं।
2: मैं अभी जो मेरी अपनी यूट्यूब पे वायरल गजल है,
0: हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल शामिल करें, बिल्कुल बिल्कुल।
2: उसकी वजह ये कि उसी से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफी फेम मिल रहा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल शामिल करें।
2: उसकी शायरी भी कुछ ऐसी है कि मेरे जो दोस्त है वो आप सुन रहे हैं सारे, उनकी नजर में करूंगा। मिलते नहीं है ऐसे खजाने इधर उधर,
0: मिलते नहीं है ऐसे खजाने इधर उधर,
2: हम ढूंढते हैं यार पुराने इधर।
0: अरे है, है, है, क्या बात है, ये तो कहते पुरानी माजी की खूबसूरत यादों से है ही तो, क्योंकि अब वो दौर ही नहीं।
2: जी जी यूं कर लो
0: ताकि वो इधर से ना कैमरा देखे तो फेस पे आ जाए, अभी फेस पे आ रहे हैं,
2: ठीक
0: ऐसे ही
2: चल,
0: अब से
2: हाँ ठीक,
0: ताकि इधर से फेस पे आ रहे हैं।

0: वाह वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात है, बड़ी जबरदस्त। और बाकी ये चीजें तो वाकई आज हम ढूंढते हैं, अब तो ना वो दोस्त है, ना अहबाब है, ना वो गैदरिंग है, ना वो ठीकों पे बैठना, ना घर के बाहर फुटपाथ पे उस पे चबूतरों पे बैठना, अब कहा ना वो चबूतरे रहे, ना वो लोग रहे। वाह वाह वाह, शायरी बड़ी जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त।
1: ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कैसर भाई साहब जो कि जॉन
0: एलिया साहब के शागिर्द हैं, उनकी शायरी दोस्त है हमारे। वाह वाह, कैसे भाई माशाल्लाह खुद बड़ा शायर है, जॉन एलिया साहब का शागिर्द है, मगर वो कहते हैं आज के जॉन एलिया
1: की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया में अभी इसकी कॉल्स भी आ रही हैं, वो वायरल हो गई, अल्लाह का शुक्र है।
0: गुड माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सईद भाई कहते हैं शोभी साहब आपका और खादिम भाई का बहुत शुक्रिया कि मेरी फरमाइश पूरी की, बहुत खूब मजा आ गया बाबा, सलामत रहे सर। थैंक यू सईद भाई, थैंक यू भाई, आपके साथ आपने आज सुना तो आज हमें भी पुरानी यादें आ गई, तो बस। और फिर अभी देखें गजल भी खादिम भाई ने वो उसी दौर की गाती,
1: बिल्कुल सही बात,
0: कि वही पुराने यार, पुराने दौर, पुरानी बातें,
1: ढूंढते हैं यार पुराने
0: पुराने हकीकत है, वो बैठ के फुटपाथ पर बैठना, चबूतरों पर बैठना। अब आज तो असल में ना वो यार भी दोस्ती भी वो नहीं रही ना,
1: सच बात।
0: अब तो आज का जो दौर है वो सेल्फिश हो चुके सर, सब मतलब के, आपके साथ जब तक मैं चलूंगा जब तक मेरा मतलब है, उसके बाद ऐसे कटूंगा आप आगे जा रहे हो पीछे पता नहीं होगा कहाँ गए, पता ही नहीं कहाँ है, और ऐसी बड़े बेशुमार मिसालें जी। हम इसके बाद खादिम भाई आप क्या सुन, आप क्या शामिल कर रहे हैं
1: अब खासा, मैंने साहब का गाया हुआ
0: है, हसन की तेरी
1: ये शामिल कर
0: प्यार हुआ था, क्या बात है।
1: अच्छा आपसे एक जनरली क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने कभी कवालों को बुलवाया है यहाँ पे?
0: हाँ आ चुके,
1: तो आ जाते हैं यहाँ पे
0: कवाल, एक बैठते हैं यहाँ पर, बाकी कुर्सी पे इधर कई कई आ चुके,
1: बाकी गेट पे
0: ये सारे यही बैठे होते सारे, नीचे तबले वाला, ढोलक वाला, पूरा
1: पूरी बारात आती है,
0: पूरी पूरी वही, मतलब वो
1: उसमें बारात के बंदे,
0: मतलब उनकी बारात इतनी, उनकी बारात इतनी नहीं आती क्योंकि हम उनके साथ हम कहते रेडियो के साथ हमारे पास आकर उनके पंद्रह आदमी आ रहे हैं, हमने कहा ये भाई स्टेज नहीं है रेडियो है, तो वो अपने हिसाब से फिर अपनी गिनती के मुख्तसर, शुमाइल अपने साथ कई बार, शुमाइल दो तीन बार आ चुका है, फिर वो अली ताजी का बेटा आ चुका है, वो साकिब आ चुका है, फिर दूसरे और आ चुके, कई कमाल आ चुके, कई आ चुके, मैं कई को बुला चुका हूँ, और बड़ी जबरदस्त महफिल जमी यहाँ पर, बड़ी जबरदस्त। यहाँ पर वही गाने वाले यहाँ बैठ जाते हैं, उसके साथ दूसरे बैठे, बाकी वो इधर बैठ गए, इधर बैठे पूरे, तो ऐसे बैठते सारे नीचे, क्योंकि लाजमी ये हमारा तो असल में बेसिकली तो रेडियो है ना, ये
1: जी,
0: ये तो मैं गैदरिंग के लिए और उसके लिए हम शोगल के लिए आते तो
1: आ जाते हैं,
0: बात तो ठीक है तो नहीं, क्योंकि टीवी तो है नहीं, ये टीवी तो खुला स्टूडियो बना हुआ,
1: बिल्कुल
0: इधर बैठे बीच में मैदान वहां
1: लगा के बैठे, तो लिमिटेड स्टूडियो है ना यहाँ,
0: तो यहाँ क्योंकि रेडियो है, रेडियो में तो सिर्फ रेडियो वाली बात है कि जो ऊपर बैठे दो तीन लोग बैठे बस इतने ही है, हमारे पास माइक भी ज्यादा होते हैं तो तीन माइक होते ज्यादा होते कि गेस्ट हमारे तीन से ज्यादा होते नहीं गेस्ट हमारे, तो ये सिलसिला 12 के सालों से चला आ रहा है, बहुत अमजद अल्लाह उसकी मगफरत करे, अमजद अपनी टीम के साथ आ चुका है यहाँ पर, अमजद आया, शुमाइल आया, फिर उसके बाद दूसरे आए, फिर वो साकिब आया, फिर काफी सारे लोग आ चुके हैं, कवाल तो काफी आ चुके हैं, तो चलें अब इसके बाद माशाल्लाह जी।